हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

0: ना ना ना ना ना गुर छोड़ मुझे मत जाना, अरे ना ना ना ना ना ना गुर छोड़ मुझे मत जाना। प्यार से तेरा दिल भर देगा ये तेरा दीवाना, अरे प्यार से तेरा दिल भर देगा ये तेरा दीवाना, अरे ना ना ना ना ना ना ना ना।
1: मैं लड्डू बोल लड्डू
0: लड्डू
1: लड्डू लड्डू लड्डू
0: लड्डू ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू। एक नजर है एक हंसी है कीमत किसकी बंधु, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू। दिल का रंग जिगर के टुकड़े अरमानों का हीरा, दिल का रंग जिगर के टुकड़े अरमानों का हीरा, इनको लेकर बांधे लड्डू खाए दास कबीरा। रे पर देखो देखो आहा आहा, रे पर देखो देखो आहा, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू।
2: अबे हट, खाली जिसका पेट उसका प्यार से खाली बोल, और इस लड्डू में दुनिया का हर ऐश दिया है घोल। सब जय जय इसका बोल, सब जय जय इसका बोल, सब जय जय इसका बोल। सोने का लड्डू
0: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
0: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
0: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
0: प्यार का लड्डू,
2: सोने का लड्डू,
0: प्यार का लड्डू,
2: सोना
0: प्यार,
2: सोना
0: प्यार,
2: सोना
0: प्यार।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें कर

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammed Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे टैलेंट बहुत रेयरली मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट में मैं करता था उनको. रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर की हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है.

स्वाभाविक है। कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है, और वो जैसे रोने लगता है सब खुशी मनाने लगते हैं। भक्त कबीर ने बड़ी गहराई से सोचा इस बात को और महान संदेश दे दिया।

0: एक चीज के लिए एक आदमी अमूल्य हो जाते हैं, जिसकी मोल नहीं, तोड़ मोल नहीं होती, और ये चीज हमेशा खुदा के घर से आता है। वो चीज थी मुकेश की आवाज की टिम्बर, जिसका वो धनी था। वो टिम्बर किसी की आवाज में मुझे और सुनाई नहीं दी।
1: भाई और बहनों, ये है मेरी जिंदगी का पहला गाना।

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

तैयार हो जा। सुनने वालों, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

जा रही है बीन कोटरा और तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुनो तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो दिस आई बिन कोटरा तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स ब्रासा फेस्ट जाटरडे 29 एंड जोंडे 30 अगस्त इन जिया इवेंट सेंटर हे यू

पूरा तोर दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

चांद जैसी लड़की। उदित नारायण की आवाज में गीत आप सुनी और फिल्म देवदास से निकाला हुआ। उजाला रेडियो पर अब लता जी। हाँ, लता जी के साथ श्री कुमार को आप सुनेंगे।

जिया जले, जिया जले, रात भर धुआं चले। लता जी की आवाज साथ में एम जी श्री कुमार, फिल्म का नाम दिल से, और जावेद अली की आवाज में गीत सुनिए।

नम्र संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.net info@ujala.net

यू आर उजाला रेडियो के सिर्फ आपने सुने हैं और भी उमर वागी हुसैन की आवाज में ये शानदार सिनेमा और एकदम हम शुरू करते हैं यहीं से आप लोग की फरमाइश एंड यार खेस हम सोवेन के रहने वाली है सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पदे का 80 साल का जन्मदिन आज है तख्त सफी आ रहा है जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हार्दिक से बधाई शुभकामना पेश किया जा रहा है भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है लंबी आयु के वास्ते ताकत तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना किया जा रहा है और ये भी प्रार्थना है कि आपको हर एक मुसीबत से हर एक बीमारी से दूर रखे जियो तू सौ सौ साल सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पंडे समस्त परिवार के साथ आज धूमधाम के साथ आपके जन्मदिन मनाया जा रहा है और आज की उजाला रेडियो के प्रोग्राम शनिचर 18 तारीख जुलाई के प्रोग्राम में 80 साल का जन्मदिन जबकि आपके है सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पंडे खुद अपने आप के लिए फरमाइश करें हनुमान चालीसा

0: की जय।
1: आम सुल्फीन के रहने वाली हैं सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडे का आज 80 साल का जन्मदिन है। खुशी के मौके पर खुद अपने आपके लिए फरमाइश के प्रोग्राम में आम सुल्फीन की रहने वाली सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडे का 80 साल का जन्मदिन आज है और इस खुशी के मौके पर लड़कन आशा शारदा मालती रजेश और रेशमा प्यारी प्यारी माँ के लिए दो दामाद सुरेन और रवि पतो अंशिता प्यारी प्यारी सासू जी के लिए बड़ी प्यार दुलार बधाई शुभकामना के साथ पेश करें।

हम सुल्फीन के रहने वाली सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडे का 80 साल का जन्मदिन आज है। इस जन्मदिन के खुशी के मौके पर क्लाइंट केंद्रन वरिषा तनिष्ठा द्रोणिका न्यूज वीरांसा सजीवन अर्चना एंड सविता नानी के लिए मीरा और नेहा आज के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत शुभकामना के साथ पेश किए। हम सुल्फीन की रहने वाली सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम बतेंगा आज 80 साल का जन्मदिन है। तख्त सफी आ रहे खुद अपने आप के लिए प्रोग्राम में फरमाइश के हैं।

टॉम सुल्वेन के रहने वाले हैं। माताश्री सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम बंदई का आज 80 साल का जन्मदिन है। जन्मदिन की खुशी के मौके पर खुद अपने आप के लिए फरमाइश की है। सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पंडित का 80 साल का जन्मदिन आज 80 से व्यारा है। खुशी के मौके पर लड़कन आशा शारदा मालती रजेश और रेशमा प्यार प्यारी माँ के लिए दो नमाज सुरेन और रवि पतो अंशिता प्यारी प्यारी सास के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत के साथ पेश करें।

है, शनिचर 18 जुलाई। तो आम सुल्फेन की रहने वाली सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडेय का आज 80 साल का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पर लड़कन आशा, शारदा, मालती, रजेश और रेशमा प्यारी प्यारी माँ के लिए दो दमाद, सुरेन और रवि और पोतो अंशिता प्यारी प्यारी सास के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत के साथ फरमाइश किया। आम सुल्फेन की रहने वाली सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडेय का 80 साल का जन्मदिन आज है। इस जन्मदिन के खुश के मौके पर लड़कन आशा, शारदा, मालती, रजेश और रेशमा माँ के लिए और दो दमाद सुरेन और रवि एंड पतो अंशिता प्यारी प्यारी सासू जी के लिए बधाइयां शुभकामना के साथ पेश

हम सुविंग के रहने वाली सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पंडेई का आज 80 साल का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के खुशी के मौके पर लड़कन आशा शारदा मालती रजेश और रिश्मा प्यार प्यारी माँ के लिए दो दामाद सुरेन और रवि और पुतो अंशिता अपनी प्यारी प्यारी सास के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत के साथ नामा को फरमाइश किया। सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडेय का 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर नाम क्लैन केंद्र वरिषा तनिष्ठा द्रोणिका नील्स वीरांशा संजीवन अर्चना और सविता की तरफ से नानी के लिए मीरा और नेहा आज के लिए बड़े प्यार दुलार मोहब्बत के साथ पेश करें। सुनिया

आज है शनिचर 18 तारीख जुलाई, तो अम्सलविंग की रहने वाली सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडे का 80 साल का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के खुशी के मौके पर खासकर लड़कन क्लैन केंद्रन वरिषा तनिष्ठा द्रोणिका नील्स वीरांसा संजीवन अर्चना एंड सविता नानी के लिए एंड मीरा नेहा आज के लिए बड़े प्यार दुलार मोहब्बत के साथ फरमाइश के सुपर नानी एंड सुपर आज के लिए सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडे का आज 80 साल का जन्मदिन है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर खुद अपने आप के लिए फरमाइश किए हैं।

आज है शनिचर 18 तारीख जुलाई, बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि अमसोफेन की रहने वाली सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडे का 80 साल का जन्मदिन है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर खुद अपने आप के लिए फरमाइश के की रहने वाली सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडे का 80 साल का जन्मदिन आज है। ये जन्मदिन के उपलक्ष्य पर भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है लंबी आयु के वास्ते, ताकत तंदुरुस्ती के लिए, और ये भी प्रार्थना है कि आपको हर एक मुसीबत से, हर एक बीमारी से दूर रखे, आप सदा खुश रहे। लाइफ लॉन्च से ना तो कमर्शियल ब्रेक, बाकी की फरमाइश उजाला रेडियो के जरिए पेश किया जाएगा। सुन वालों, उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश देना है, स्टूडियो ईमेल info@ujala.net 15 aanvragen voor maar 100 euro op UR Ujala Radio. Blijf luisteren, tot straks.

आमसल सिंह की रहने वाली सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडे का 80 साल का जन्मदिन है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर नामज किंद्रन आशा शारदा मालती रजेश और रेशमा की तरफ से प्यार प्यारी माँ के लिए दो दमा सुरेन और रवि और पुतो अंशिता प्यार प्यारी सांस के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत के साथ फरमाइश की। सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडे का 80 सफेद आज है। नाम से क्लाइन केंद्र वरिषा तनिष्ठा द्रोणिका नील्स विरांसा संजीवन अर्चना एंड सविता नानी के लिए मीरा एंड नेहा आज के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ पेश करें।

इंसानी अठारह तारीख जुलाई आम सुफेन की रहने वाली सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडे का 80 साल का जन्मदिन है, तख्त सफी आड़ा है। खुशी के मौके पर वरिषा, तनिष्ठा, द्रोणिका, न्यूज, वीरांसा, सजीवन, अर्चना एंड सविता, नानी के लिए मीरा एंड नेहा आज के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत के साथ फरमाइश के। एंड यार्ख सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडे खुद अपने आप के लिए 80 साल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर फरमाइश के हैं।

अमसल वेंग के रहने वाली सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडे का 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन की खुशी के मौके पर खुद अपने आप के लिए फरमाइश के प्रोग्राम में अमसल वेंग के रहने वाली सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडे का आज तख्त से व्यारह है। इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर लड़कन आशा शारदा मालती रजेश और रेशमा माँ के लिए दो दमाद सुरेना रवि एंड पतो अंशिता सास के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत के साथ पेश करें।

आमसल फिंग रहने वाली सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडे का 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के उपलक्ष्य पर लड़कन आशा शारदा मालती रजेश और रेशमा प्यारी प्यारी माँ के लिए दो दो मात सुरेन और रवि और पुतो अंशिता प्यारी प्यारी सास के लिए नहमा को फरमाइश के। रहने वाली सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडे का 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के उपलक्ष्य पर नाम क्लैंग केंद्र वरिषा तनिष्ठा द्रोणिका नील्स विरांसा संजीवन अर्चना एंड सविता नानी के लिए मीरा और नेहा आज के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत के साथ पेश करें।

0: Am Sylvink, René Wally, Sushila, Chandrika Singh, Gangaram, Pandeka, Assi Saal ka jenamdien aaj hai, 80se verjaardag aaj hai. Is jenamdien ke khushi ke mauke per namens de kleinkinderen, Varisha, Tanishta, Dronika, Niels, Viransa, Sanjeevan, Achana en Savita, Nani Klee, Mira, aur Neha aaj klee bade pyaar dular mahabbat ke saath farmaish ke.
1: Bekarar ho ke
0: और भी फरमाइशें जारी किया जा रहे हैं सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पंडे के लिए 80 साल के जन्मदिन के शुभ अवसर पर खुद अपने आप के लिए फरमाइश कहें ये शानदार से नगमा

आज है शनिचर 18 तारीख जुलाई अमसलफेन के रहने वाले सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पंडित का 80 साल का जन्मदिन है। जन्मदिन के शुभ अवसर पर खुद अपने आप के लिए फरमाइश के प्रोग्राम में ये शाम दर्शन हमारे प्रोग्राम में आखिरी फरमाइश हम ला रहे हैं सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पंडित के लिए 80 साल तख्त सफ़ी आडा के उपलक्ष्य पर और इस खुशी के मौके पर लड़कन आशा शारदा मालती रजेश और रेशमा माँ के लिए दो दामाद सुरेन और रवि पतो अंशिता सास के लिए नमस आलोक क्लैंग केंद्र नानी और आजी के लिए प्यार दुलार मोहब्बत और शुभकामना के साथ पेश है।

स्लोवेन की रहने वाली सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडे का आज 80 साल का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पर नामस आशा शारदा मालती रजेश एंड रेशमा माँ के लिए दो दमाद सुरेन और रवि और पोतो अंशिता सास के लिए नामस अलग क्लैंग केंद्र फॉर नानी और आज के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत और शुभकामना के साथ फरमाइश किए। आम सुविंग की रहने वाली सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पदे जितनी से फरमाइश था 80 साल के जन्मदिन के खुश के मौके पर अब समाप्त होने पर आए हैं। उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश सुनने देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक वेंस यून हेल फैन दाग नामस उजाला रेडियो फन हार्ट गेफेलिस्टेड मेट यू 80ste verjaardag। मोई से फरियारी मने समस्त परिवार के साथ एक शुभ शाम शुभ रात्रि। ये है उजाला रेडियो सुनने वालों और उजाला रेडियो के जरिए आपने सुने हैं फरमाइश। अगर आपको उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश देना है सुनने वालों स्टूडियो ईमेल ना info@ujala.nl और भी 15 aanvragen voor maar 100 euro op UR Ujala Radio. 15 aanvragen voor maar 100 euro op UR Ujala Radio. Stuur je e-mail naar info@ujala.nl. यहां तक आपने सुने हैं फरमाइश जो कि हमने पेश किए हैं सुन वालों। ब्लैक फ्लावर्स रनर उजाला रेडियो आने वाले दिनों में फिर हम आपसे मिलने वाले हैं उजाला रेडियो पर। मौज रहिए, अच्छे से मोई वीकेंड माकर मोई वीकेंड फॉर्म परिवार जान पहचान के साथ दोस्तों के साथ। लेट गुड ऑफ यूर सेल्फ लेट गुड ऑफ अंदरन मौज रहिए।

तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर €100 ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मोर €100 ऑफ उजाला रेडियो।

के घर पे आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल ना info@ujala.net info@ujala.net।

है ये ना कि खुशी हो या गम, खुशी हो या गम, उजाला रेडियो है आपका साथ हरदम। तो इसलिए हमेशा सुनते रहना।

जुनिता गांधी की आवाज, उजाला रेडियो और वेबसाइट इंफॉर्मेशन के लिए www.ujala.nl।

हम इस गीत को यहीं पर रोक देते हैं, इस वादा के साथ कि बहुत जल्दी इस गीत को हम आपको पूरा, हाँ पूरा सुना देंगे। यस, फिल्म का नाम सत्ते पे सत्ता, और हम ये याद रखेंगे कि गीत हमें पूरा सुनाना है कभी ना कभी, मगर बहुत जल्दी।

मोहम्मद रफी साहब के साथ आशा जी। फिल्म का नाम तीसरी मंजिल, तीसरी मंजिल फिल्म से गीत आप सुने। उजाला रेडियो है ये, तू जाने है तो

कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, लेकिन कुछ ना कहो तो।

सारा जहां छोड़ के मैंने तुझे सलाम किया है। मोहम्मद रफी एंड उषा मंगेशकर से आप गीत को सुने।

धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। अनुराधा पौडवाल के साथ कुमार सानू, फिल्म आशिकी का गीत उजाला रेडियो को आप सुन रहे हैं। फॉर इन्फॉर्मेशन कह के आप www.ujala.nl कम ये नीट आउट दान स्टूडियो मेल च नार info@ujala.nl of je belt tijdens kantooruren 020 409 0807.

मुझे, हाँ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। सोनू निगम की आवाज और फिल्म संघर्ष से आप सुने हैं।

से नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। फिल्म मासूम, गायक अनूप घोषाल। उजाला रेडियो का प्रोग्राम सुनने वालों, इस हिस्सा का प्रोग्राम में भी आपको स्वागत करता हूं, शामिल होने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। और अच्छे से अच्छे गीतों हम सेलेक्ट करके रखे हैं आपके लिए।

दे दो ना, तुम मुझे दे दो अपने गम। इसलिए तो हम कहते हैं हमेशा खुशी, हाँ खुशी हो या गम, खुशी हो या गम, उजाला रेडियो है आपका साथ हरदम। कुणाल गांजावाला से गीत आप सुने, फिल्म बाबुल से।

दे चुके सनम और तेरे हो गए हैं हम तेरी कसम। और अगर कसम काफी नहीं है तो कसम की कसम भी देता हूं। कविता कृष्णमूर्ति एंड मोहम्मद सलामत के साथ डोमिनिक, फिल्म का नाम हम दिल दे चुके सनम, या नॉक स्टेट्स क्लिंगत प्रख्तख। उजाला रेडियो है ये सुनने वालों। अब कोई मिल गया

Jij. Ja, jij kiest voor de grootste. Jij kiest voor Ujala Radio. Koi mil gaya, aur mera dil gaya. Aisa to hona bhi chahiye. जब कोई मिल जाता है तो दिल तो देना पड़ेगा ना। कुछ कुछ होता है फिल्म का नाम। गाने वाले, गीत के गाने वाले कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक एंड उदित नारायण। अब अगला गीत की तरफ हम चले तो एक और बहुत ही सुंदर गीत पेश है।

सीने के सहारे तू जाने है तो कस्मे वादे, हाँ कस्मे वादे फिल्म से आप गीत को सुने।

अब तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। उदित नारायण से गीत आप सुने फिल्म डर से, और अब तेरी उम्मीद तेरा इंतजार।

0: सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं,
1: तुमसे प्यार करते,
0: इसलिए तो तेरी उम्मीद और तेरा इंतजार करते हैं। फिल्म दीवाना, गीत के गाने वाले कुमार सानू एंड साधना सरगम, उजाला रेडियो पर। और हम बाती उजाला रेडियो के, और उजाला रेडियो है आपके। सो सिंपल।

यहाँ कोई पास है कोई दूर है, क्यों क्यों है ये दूरियां। महेश चौहान की आवाज, फिल्म लव आजकल।

अंधेरा में सभी लोग उजाला को ढूंढते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इस उजाला को अपने दिल में बंद करके रख लीजिए।

0: You Are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: नमस्कार अस्सलाम वालेकुम मैं हूं शहीद गुलजार यह है उजाला रेडियो यू आर का पैगाम आप सुन रहे हैं फिर से आपके खिदमत में हाजिर हूं लेकर कुछ मिले जुले संगीत सिलेक्शंस जो आप रोजाना नहीं सुनते हैं आइए सबसे पहला सिलेक्शन ज़ोहब हसन की आवाज़

बोलो बोलो बोलो बार बार क्या है मेरा नाम। जोहब हसन की आवाज में आप सिलेक्शन सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए। हम आपको प्रोग्राम में अभी एक मुकाबला कवाली सुनाने वाले हैं। आप सुनते रहना प्रोग्राम को, सुनते ही जाना। अभी कुछ ही देर में हम आपको एक मुकाबला कवाली सुनाने वाले हैं। शायद ये कवाली भी आप बहुत दिनों नहीं सुने हैं, लेकिन उससे पहले दूसरा आदमी नामक फिल्म से आइए मिलकर सुनते हैं किशोरदा और द नाइटिंगेल लता की आवाज़।

सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और द नाइटिंगेल लता मंगेशकर की आवाज। वादा के मुताबिक हमने अभी आपसे कहा है कि हम आपको एक मुकाबला कवाली सुनाने वाले हैं, तो आइए मिलकर सुनते हैं यूसुफ आजाद कवाल और मोहतरमा रशीदा खातून की आवाज में के हड़ताल करेंगे दिल वाले। मजेदार कवाली है, आइए मिलकर सुनते हैं यूसुफ आजाद और रशीदा खातून की आवाज। स्टेशन है उजाला रेडियो।

छोड़ दे। फैक्ट्री हो बंद मेकअप की, बिना मेकअप के बन जाए तमाशा सूरतें सबकी। लिपस्टिक, नेल पॉलिश, आईब्रो,

मजेदार मुकाबला कवाली आपने अभी सुने हैं यूसुफ आजाद कवाल और रशीदा खातून की आवाज में। द राजन्स के साज पर आइए मिलकर सुनते हैं तू पास है मेरे। उजाला रेडियो का पैगाम है, आप प्रोग्राम को सुनते रहना, सुनते ही जाना, आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं।

हम आपको कुछ अच्छे अच्छे सिलेक्शन सुना रहे हैं, कुछ मिले जुले संगीत आपकी खिदमत में नशर है। ऐसे में आप अभी सुने हैं राजंस के साज पर, तू पास है मेरे, तू साथ है मेरे, अजीब हादसा हुआ ये कैसे। हम आपको अब प्रोग्राम में एक हार्ट ब्रोकन सॉन्ग सुनाने वाले हैं, और ये है द हार्ट ऑफ मिलियंस, दमायती मुकेश जी की आवाज़। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। लीजिए द हार्ट ऑफ मिलियंस, दमायती मुकेश।

0: रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामकाज के वास्ते आप डायल करें एम्स्टरडम में 0204090807 पर 020-409-0807 पर या आप लिख सकते हैं info@ujala.nl. Just enjoy the vibrations of UR Ujala Radio. Radio. Tu jaane hai, toh? Toh?
1: The most sensational and
2: the best. The best.
0: ओहो ओहो तुमसे दूर रहकर हमने जाना प्यार क्या है. द नाइटिंगेल लता और मोहम्मद रफी साहब.

द नाइटिंगेल, लता मंगेशकर और सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आप अभी सिलेक्शन सुने हैं। और मिले जुले संगीत में मुझे तुम याद करना और तुम मुझे याद आना, क्या बात है।

मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और नाइटिंगेल लता मंगेशकर की आवाज आप अभी सुने। यस माय डियर, एंजॉय द वाइब्रेशंस ऑफ यू आर वेर एवर यू आर। आइए मिलकर सुनते हैं पास नहीं आना, पास नहीं आना ना हटो ना, पास नहीं आना दूर नहीं जाना।

हाँ जी सुना आपने, पास नहीं आना भूल नहीं जाना, तुमको सौगंध है कि आज मोहब्बत बंद है। द नाइटिंगेल, लता मंगेशकर और हसीन के पुजारी किशोर दा की आवाज़ आप अभी संरक्षण प्रोग्राम में सुने हैं। वैसे रेडियो के बारे में, यानी कि रेडियो के क्षेत्र पर आपको कोई भी काम करवाना है तो आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक, और फ़ोन का नंबर है 02040908 07 पर, 02040908 07 पर। वंस अगेन प्रोग्राम में सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज़, किया हुआ तेरा वादा।

सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आप अभी सुने हैं क्या हुआ तेरा वादा। उजाला रेडियो का पैगाम है। आपकी खिदमत में स्टूडियो में हाजिर है आपका खादिम शहीद गुलजार। मिले जुले संगीत में आइए, फिल्म सागर से आइए, मिलकर सुनते हैं द मेलोडी क्वीन।

यू आर उजाला रेडियो के सभी सुनने वालों को नमस्कार, सलाम वालेकुम। मैं हूं शहीद गुलजार। मिले जुले संगीत के साथ हम स्टूडियो में फिर से हाजिर है और ऐसे में आइए मिलकर सुनते हैं अलीशा चिनोई की आवाज में मोंशेरी मोंशेरी, अरे हो गई मैं तेरी, मानो कसम से।

Mon chéri. Réveillez ma terre. Parlez-vous français? मजेदार सलेक्शन आपके खिदमत में अर्ज की गई है। उजाला रेडियो यू आर के जरिए आपकी खिदमत में, जैसे कहा, शहीद गुलजार हाजिर है। लीजिए सलेक्शन किशोरदा की आवाज, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना।

0: for music.
1: Enjoy the vibrations of Ujala Radio wherever you are.
2: The most sensational and
3: the best. The best.
1: लीजिए प्रोग्राम में पेश खिदमत है नाजिया हसन की आवाज़ तेरी याद आती है रिकॉर्ड का टाइटल हॉटलाइन

वो तेरी याद आती है, सूरज चलता है, बस तेरी याद आती है। नाजिया हसन की आवाज। ओ कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का, सुरो कबाचा मोहम्मद रफी साहब। स्टेशन है यू आर उजाला रेडियो। फोन का नंबर 020-409-0807। हर एक कामर काज के वास्ते कितना प्यारा वादा।

0: कितना प्यारा
1: वादा, वो कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का। सुर का बादशाह मोहम्मद रफी और द नाइटिंगेल लता मंगेशकर की आवाज। सम फैबुलस सॉन्ग्स ब्रॉडकास्टेड बाय यू आर उजाला रेडियो। बार के श्रोताओं को एक शुभ दिन प्रकट की जा रहे हैं स्टूडियो से एम्स्टर्डम से। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं, आप सभी खुश रहे और सलामत रहे। कुछ मिले जुले संगीत मिक्स मार्क सॉन्ग्स आपके मध्य में प्रस्तुत किए जा रहे हैं और एक और सिलेक्शन हो जाए। इस बार है किशोरदा, फिल्म का नाम एक और सिकंदर। धड़का दिल दिल दिल दिल भर जाने के लिए, अरे हो गया सहारा जिंदगानी के लिए।

धड़का दिल दिल दिल दिल भर जाने के लिए, अरे हो गया सहारा सारी जिंदगानी के लिए। हम आपको सुना रहे कुछ सिलेक्शंस जो आप रोजाना रेडियो पर नहीं सुनते हैं। युवा के जरिए अब एक नगमा हम आपको सुनाने वाले हैं। ये ज्यादा पुराना सिलेक्शन नहीं है। फिल्म का नाम नसीब, सन 1981 का फिल्म, 1981 का फिल्म नसीब से द नाइटिंगेल, लता मंगेशकर की आवाज में, मेरे नसीब में तू है।

द रॉकिंग सेंसेशन यू आर उजाला रेडियो को आप सुन रहे हैं। लीजिए शेर पेशे खिदमत है कि चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। मेरे जीवन साथी नामक फिल्म से किशोर दा और आशा जी की आवाज़, दीवाना लेके आया है दिल का तराना।

0: दीवाना लेके आया है दिल का तराना किशोर दा की आवाज। फिल्म का नाम मेरे जीवन साथी।
1: दिल का तराना दीवाना लेके आया।
0: डाउन मेमोरी लेन सॉन्ग्स आपके मध्य में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामकाज के वास्ते आप डायल करें एमस्टरडम में 020-4098-07 पर 020-409-0807 पर, या आप लिख सकते हैं info@ujala.nl। जस्ट एंजॉय द वाइब्रेशंस ऑफ यू आर उजाला रेडियो। रेडियो तू जाने है तो
2: द मोस्ट सेंसेशनल एंड
3: द बेस्ट।

0: दूरी, अरे दूरी सही जाए ना,
1: दूरी सही जाए ना।
0: हमारे सुनने वालों के मनोरंजन के वास्ते उजाला रेडियो के माध्यम से फेंका जा रहा है आकाशवाणी, दयाबे इंटरनेट, उजाला ऐप, और पता नहीं कहां कहां से आप हमें सुन रहे हैं। मैं तो कान से सुनता हूं।

यू आर उजाला रेडियो का पैगाम आप सुन रहे हैं, शहीद गुलजार हाजिर है और कुछ मिले जुले संगीत में अब हम आपको एक गोल्डन ओल्डी सिलेक्शन सुनाने वाले हैं। वो चेहरा तेरा अल्लाह अल्लाह बातें तेरी माशा अल्लाह बड़ी बड़ी आंखों वाली जादू की है तूने बोला मुझसे बेहतर आप सुनिए मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में, चेहरा तेरा अल्लाह अल्लाह बातें तेरी माशा अल्लाह। फिल्म का नाम तुम हंसी मैं जवान।

हो तुम साथ हो जब अपने, किशोरदा और आशा जी की आवाज। स्टेशन है उजाला रेडियो, यू आर का पैगाम आप सुन रहे हैं। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं आप खुश रहे और सलामत रहे। वैसे रेडियो के काम के वास्ते, रेडियो के क्षेत्र पर हर एक काम काज के वास्ते आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक। फोन का नंबर है एम्स्टरडेम में 020-409-08-07-020-409-08-07 पर।

बस हम आपसे यही कहेंगे कि यू आर का पैगाम को आप सुनते रहना और सुनते ही जाना। हम आपसे फिर मिलेंगे। मैं हूँ शहीद गुलजार। ओ मारिया, ओ मारिया।

0: Live vanuit de Hoofdstad. Hoezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

लुशका लुशका लुई लुशा ये तो है इब्तेदा आगे होगा क्या ये तो है इब्तेदा

सभी संगीत प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मुझे खुशी है कि एक बार फिर अपने नए एल्बम आपकी सेवा में मैं और मेरे साथी लेकर हाजिर हूँ। आपके प्यार, स्नेह और पसंद की वजह से ये मुमकिन हो पाया। अब की बार मैंने अपने को सिंगर्स के साथ डुएट्स, मेरा मतलब है युगल गीत, पेश किए हैं। एक सीडी में मेरे सेमी क्लासिकल फिल्मी गीत हैं जो मुझे बहुत पसंद है। इस संग्रह में शामिल हैं मेरे पसंदीदा सीनियर सिंगर्स के लाजवाब गाने और कुछ गैर फिल्मी गीत भी। इन गीतों को याद करते वक्त वो जमाना याद आ गया जब इन गीतों की रिकॉर्डिंग हुई थी और बहुत सी यादें ताज़ा हो गईं। कुछ दोस्त पुराने आ पहुँचे और जिक्र तुम्हारा चल निकला। आँखों में चढ़ी बरसात बहुत, यादों में ढले नगमात बहुत।